0: बिल तो दक्कम फसे होते मियोती फाही पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदु फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देखके ने रीलोड रास्टस नुनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेटे देने मस दिबावैर बिल नु देखी गें लारिय वीनुए नेंगी गें उलेक नुजे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही
1: इस्लामी उदरहम
2: जमल हंगुराम बसराग रब्बेरुगा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रलियल्लाहु अन्हाया अमीरुल मुमिनीन सैयदना अली रलियल्लाहु अन्हुगे लश्कर एब्बे कणिब्बेका कुरिमतिली एर दे लश्करु गावेस मुस्लिमुन्ना हेवेदे वरग्गिन बेयकु तिबुमायकु ईमानकमगे अहुलवरिंगे दे जमातुगे दिमेदुगा हंगुराम नुफेशि वेतो एबा मीहुं मसेक्केक्कुरे नतीजागे गोतुन सुलहवरे एब्बसुमका कारियन आदेवुनु नमवस एक्कोळुं अलीगे फाणुगे लश्करुगा उस्मानु रलियल्लाहु अन्हुगे कातिलुन तिबे देबा मीहुं सुलहवेज्जनमा एमीहुन्न वाणिगुं एमीहुन्न रंगळंगेंगे अनि कोळुं उम्मुल मुमिनीनगे लश्करुगा सय्यदना अलीया तलहतगे फाणा जुबेरगे फाणा तिंबे कलुंगे मेदुगा हंगुराम हिंगं एदे मीहुं तिबे एहेंकमु नुरस्मी सिफेगा हंगुराम फशिजे देफरातुगा तिबे हेवकमगे अहुलवरिं हुट्टुवं एदियेदि तिबे जमल हंगुराम फशिजे आदे हे मी सय्यदना उस्मान रलियल्लाहु अन्हु शहीदु मफो मुस्लिमुना कुरमतिवि एम्मे हितामवरि हादिसाए मिहार बदुरा अहुदुगे अब्तोलों एतिब्बेवि एबेकलकु अणिब्बेकलका हतियारायकु बद्दल कुरफमा तैयारशे मिहार बदुरा अहुदुगे अब्तोलों एतिब्बेवि एब्बेकलकु अणिब्बेकलका हतियारायकु बद्दल कुरफमा तैयारशे

0: Hela Nashala. Hela Nashala.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: हमें कनी नुवदी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएमओ
1: रूमिया आई लव यू
2: दुआ को सारे गीतों के जैसा रो वादा नंता
3: नो
2: प्रॉमिस
3: प्रॉमिस
4: एमी हम था अबदो एकु गबो मा बाउ दुवी

0: tenemos que regresar macán, ¿verdad?
1: Tiro si fija, a ti que quiero si fija justo aquí dos sumatos. Es el mismo que curar este camino.
0: Los sumas curar, ahora se llama a ver si me can curar.
1: Va el mismo para fugir y va a comer que te ingueta. Lo si fijo.
2: Ah, va el mismo.
0: No, no, no, no, no,
1: de morde, da ma, de
0: mi
1: filho. Ah, e aí, era bolo massa, vai
2: Kanne bavis to?
0: Kanne
2: bavis to? Ah, era pa, ekaku ekanya vara baru kankan kuran jeheni kanne ge hemwima kanne ge ehin e wani aslo hagi katu komme kanne tabura boda komme duwa ke seta baru kankame kuran jehe duwa ka bumis fahare ge vedanu esa obekkama
0: kama ko den a den e ti bai mi honge do ekoge emmenna kanu wana den mi hawa nufi hen wes kevena do
2: a nufi hen nuke men ti hama kuran jehe kan ka rofi duan ta keveni do
1: ekam ne miharo den zaman badalwamo ngas miharoshi madumadum fedowamo ne dani do
2: de fedo efo ko jannani
1: den enduru nastaya me den varang healthy echi ka
2: gotto
0: healthy den ekam ko stroshi hunnan jehe
1: roshi hunnan jehe
2: Hello, dear. Yes, it's Roshi. How are you? I'm fine. How are you doing?
0: Ah, see, I have one. Madhu, I regan.
2: Yes, sir. Madhu. Good. Aslo, rotta ki den kanya varak kahi va khalche baim mi hu. Menne no den.
0: Ah, menne dekho varak kahi. Isse ham firi hai no ha. Sako.
1: Den Roshi kabe sunna ne mi tuni rotta bo rotta huni rotta haru rotta ha. Tige ke mi hinga ne mi ke komba wate.
0: I'm going to go to the house.
2: बड़े ते डिस्को इच्छी ही तो
0: ये
2: रोच्ची ही नहीं तो हमें ये रोच्ची नहीं आह मैं
0: हरामला
2: वाला बड़ा कांग वेज मिया तो ये नहीं मिजो मेरे सालाय में वे नहीं थी नूके गोस्वी ना मोले जैसा
1: और इन गोस्वी अभी हाँ ओके तो मेरे दोस्त तो हम रशिफी है आम मुख शेड्यूल को रुहरी हाक में वाला कामयाब कर निम्मा देवे ने दो हाक बोंग आहर में विषय देने इंगे दूसरों में
0: कॉलम में सामा आह देखो रे चकुरा मस्त
2: ती हाँ वाह दाख का मस रोशनी फिर हम उन ती दानी नोडी दामा आनी भी फता हो रही
0: निम्मोडी मिहार
1: निम्मादी
2: निम्माल ऐंती हिरी दो हाँ इस वो भाई तंगरे दामा आडे विस नहीं वे हम वे के
0: हाँ
2: जैसे मानों
0: तो
2: दामा आडे नहीं वे मैं खानी ही नहीं फिर हम उन
0: खानी
2: I'm going to go to the house. एक वे विश्रांगल वाने उसका ऐसी के वाह के देख के हमें अमिता गोस वे जमी मस्त रहोगे न बोले बदल वे जे हर
0: आह साबुन वे साबुन
2: आह
1: एम कोल्ला वे जहाल दे वे हर में
0: ऐसे फेल लव जहाल
1: ऐसे फेल लव ओके
2: मी लव मी कहाँ का खास कुरा लवे
0: खास कुरा देंग अरे

0: 91 MHz DVF Abadus Emmegat
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: मीना वॉशिंग पाउडर मीना
1: व्हाट
2: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है मिसुअल के जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम पार गड़ सु मिनट कौन में हफ्ता को स्कूरी एक गिंदा बालाना साड़ी मिशोग गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिने सुअल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफ़ार नगा गुरा तुम खास हादिया ली बेने एम में गिने सुअल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौन में महक गिवस एम में फाहुशोगा
1: गेस्ट डायलॉग ಹಿಮನಾಲ್ ದಿನಿ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಿ ಬೆ ಮಿ ಹೆಸಬ ನೆ ಶೋಗೆ ಇತರು ಬ್ಯಾತಕ ದಿಯಂಗೆ ಕುರಿಂ ಫ್ರತಮ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ ಗೆ ಲವೆ ಹಿಮನಾಲ್ ದೇನ ಲವ್ ಯು ಫೋ ಅರ್ಗುನ್ ಪತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನಾ

0: Still aggressive. Still angry. You love this image of yours, right?
1: Sorry, stop it.
2: अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए।
0: मैं ना तुम एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ।
2: क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली पुंग दूंगा।
0: लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है उन्हें। And I didn't know how to explain him that. हम ना शादी कर लेते हैं जल्दी से। मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना तो वो चले जाते हैं।
2: मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा।

0: मुक्ति के पीछे भाग मत, अपने इश्क में इतना जल कि मुक्ति खुद तेरे पैरों में गिर के भीख मांगे कि स्वीकार करो मुझे।
1: फिल्म के लीड रोल तक फेनिगेंदी धनुष कृति सेनन कलायलो प्रोडक्शन सा टी सीरीज गुड़गें उफेदी मे प्रोजेक्ट रश्मि को उलान कुरी दिहास तेविस वनाहर के जून महु रांजनाय दिहा हर फुर्मा दिमाको मेया को कुरी के फिल्म के सपोर्टर के मेदुग बोड़ इंतिजारें उफेदी फिल्म शौगवेर कं इंतिहां उफुलुनु नतीजा कवि सोनम कपूरा धनुष फेनिगेंदिया रांजना अनेक्कावस ट्रेंड वांफेशुं रांजना हुआ में तेरे फदलवतं अलुन ट्रेंड वांफिशी।

0: वही पे पिक्चर आने लिए ना।
1: कौन से?
0: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
2: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
3: तेरी। अरे
4: 2011 हिंदी फिल्म बॉडीगार्ड की इतर तारफ का बेनु वाने फिल्म नो अहरुगे एम में कामयाब ए फिल्म गे गोतु गवी में फिल्म की 2011 मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड के हिंदी रीमेक मी दे फिल्म की वेस मास्टर डायरेक्टर सिद्दीक लिए डायरेक्ट को फवा दे फिल्म नमवेस मी दे फिल्म तैयार को फवनी ए फिल्म में निस्पे वा बेदुन तिरेंगे शावरी कमरिया एको किंग
5: मैं एक बॉडीगार्ड हूं मेरी ड्यूटी के अलावा ना मुझे कुछ दिखाई देता है ना मुझे कुछ सुनाई देता है मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं
6: बॉडीगार्ड
5: मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना
7: बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग मैडम
8: इस बार तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड भी जाएगा
9: ओह गॉड बॉडीगार्ड कॉलेज में
7: नॉट सर बॉडीगार्ड
10: दिल का ये क्या राज है
9: कुछ तो करना पड़ेगा हेलो
7: बोलिए
9: क्या मैं बॉडीगार्ड लवली सिंह से बात कर सकती हूँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ
5: तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो
4: मैं देखी हूँ मैगन वाहके की ए वाहके ए वफा तेरी बॉडीगार्ड को मुसंदे आयलाय गांग हिंग को जको हिमाय कुरु महावाल हुमा नंग हा मनु को ए अंग हिंग को जाकुरा फोन कॉल ते गे सबुं ए देमी हुंगे मे दो गोफे दे लोबी दे फिल्म गस वाहा कैग अस्तु दम हट्टा फे वफा तेरी कमा लोय बा हिद्दति कम गे हुसास तक की दुनिया गे कोम मे तने गवेस ए गुए कंकं कम गवी नमेस ए कंकं हुशाला दि फा गुए तफातु देहास दिहावना हर गे मलयालम फिल्म गा दिलीप कुलेफणी जय कृष्णन किया आदाग दिरियुल मेंगुले मीहुना गुले मीहे के रोल फिल्म गे स्टाइल की सादा आदि हगी गे दिरियुल मा गया कुरा स्टाइल मी फिल्म गा बोडा बलाफणी इंसानी गुलुं तका इहुसास तो के मच्चा
11: വലിയ പേരുകേട്ട ഗുണ്ടയാവാനാ അവരിപ്പോ പഠിക്കണേ
12: രാമൻകുട്ടി മാസ്റ്ററുടെ മീന ടീച്ചറുടെ മകൻ ഗുണ്ടയായിട്ട് കിടക്കേ

0: मीना, वॉशिंग पाउडर मीना।
1: व्हाट? मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है? मिसुअल के जवाब फनवानी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फनोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम बार गड़ सुम मिनट कौन में हफ्ता एक उस कुरी एक गिंदा बालाना साड़ी मिशो के गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिनस वालतो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफ़ार नगा गुरा तुम खास हादिया एली बेने एम में गिनस वालो के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौन में महे गिवस एम में फाहुश होगा
2: गेस्ते डायलॉग ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋಗವಿಸ್ ಹಂದಾನುನ್ನು ಫಿಲಾಫದ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾ ಮದಿ ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಇತುರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ಮೌಲು ಮಾತ್ಕಿನಿ ಸಿನುಮಾ ಮಿ ವಗುತ ತಿಯೇ ಹುಂತೆ ನಾ ವಾಕಿ ವೆಲಾನ ಎಮ್ಮೆ ಹುಂತೆ ನಾ ಬಾಜವಿರಿ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗೆದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

0: नुआ दिए है एक मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मगरिब नमाज़ वक़्त
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: ए मारी एकल सुजी बदल कोल्ला फिए
1: एहेंदा असलुस हाद देरे दो अलेकम हाद लोबी नेदे मि हुंगुलुनी
2: साब हे मारी हां तो एपुनी डॉक्टर बाय बदल करवा हके
3: मलेरिया गित बार लिफावा डॉक्टर बाय कोडा इत वदकुं गिन अन्नोन दोयलेवे बेनो कोलेकुं बेनो साइजे वस्मीरवान एकमकु कोन्नि माने तिकोल
4: ए इबे कीते तिकुरनी ती फोन बाब बला
3: ए मि फेमबेल दक्का देन हेगे ते एमडब्ल्यूएससी फेमबेल दक्का ले मा को 3000 रुपया आदि उम्र ततर ले मगे फुर्सत होला ले फेन
4: एहेंता कीने को मि हदम वे
3: मा बड गोते हदान के मेने एमडब्ल्यूएससी के एपन नोने ई पोटल फेमबेल दक्का लंबे मि क्रो तो लववालानी एरो अनिका ऑनलाइन को मेम के फसे ह
4: एहेम या मविस आवाहन ए पळाफा बिल दक्का लनी मि आदि कुरी मो बिल सोती नु देखि हम नसीब लववाल फाने ता दो
3: हां होरी हा बिल दक्का ल हदास करम उंगे आदि प्रमोशन लववालानी
5: MWSC ಗೆ ಉಮ್ರಾದ ತುರು ಅದಿ ತಿಂಗಾಸ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಫ್ಯಾಸಾಗಿ ಇನಾಮ್ಲಿಬೆ